0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मारो चांदी आला करिश्मा कपूर। अच्छा ओ गंदा आला शाहरुख खान। अच्छा अच्छा
0: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: पैसा
4: वो सोना
3: सोना
2: मंडल।